ਐਤੋ ਜੀ ਚੰਨ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਕਰਬਾੜਾ ਹਰ ਦਿਆਵੇ ਹਰ ਦਿਆਵੇ ਤੋ ਜੀ ਸੇਜਾਂ ਜੁਗ ਮਹਿਸੂ ਵਾਸੀ ਸੇ ਮੂਹ ਸਹਿ ਮੂਤ ਭੈ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਤਿੰਨ ਤੁਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਜੀ ਤੇ ਹਰ ਰੂਪ ਸਮਾਸੀ ਸੇ ਤਨ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਲ ਜਾਸੀ ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ ਪਰੇ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤਾ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਪਸਲਾਂ ਤੂੰ ਜੀ ਅਨਕ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਤੇ ਕਰੇ ਹਰ ਪੂਜਾ ਜੀ ਤਪ ਤਾਪੇ ਜਵ ਬੇਅੰਤਾ ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪੜੇ ਬਹੁ ਸਿਮਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਖੱਟ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ ਸੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜੋ ਪਾਵੇ ਮੇਰੇ ਹਰ ਭਗਵੰਤਾ ਤੂੰ ਆਦਿ ਪੁਰਬ ਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ ਤੋਜੇ ਵੜਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਤੂੰ ਜੋ ਜੋ ਏਕੋ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ ਤੂੰ ਨੇਚਲ ਕਰਤਾ ਸੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪੇ ਭਾਵੇ ਸੋਈ ਵਰਤੇ ਜੀ ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰੇ ਸੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪੇ ਸਿਰ ਸਾਬੋ ਪਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪੇ ਸਿਰ ਸਾਬ ਗੋਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਕਰਤੇ ਕੇ ਜੀ ਜੋ ਸਭ ਸੇਕਾ ਜਾਣੂ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮੈਂ ਡਾਸਾ ਈ ਜੋ ਤੂੰ ਪਾਵੇ ਸੋਈ ਥੀ ਸੀ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇ ਸੋਈਓ ਭਾਵੀ ਰਹਾਓ ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭ ਨੀ ਧਿਆਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮਹਲਾ ਦਾ ਮਨਮੋਹ ਗਵਾਇਆ ਤੋਦੇ ਆਪ ਵਿਛੋੜਿਆ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ ਤੂੰ ਦਰਿਆਉ ਸਭ ਤੁਜੀ ਮਾਏ ਤੋਜ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਏ ਜੀ ਜੰਦ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ ਵਿਜੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ ਜਿਹਨੋਂ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਏ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੇ ਹਰ ਗੁਣ ਸਾਧੀ ਆਪ ਖਾਣੇ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿੰਨ ਸੋ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭ ਹੋਏ ਤੁਧ ਬਿੰਦੂ ਜਾਵਰ ਨਾ ਕੋਏ ਤੂੰ ਕਰ ਵੇਖੇ ਜਾਣੇ ਸੋਏ ਜਨਾਨ ਗੁਰਮੁ ਪ੍ਰਗਟੋਏ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਤਿਤ ਸਰਵਲੇ ਬੈਲੇ ਨਵਾਸਾ ਪਾਣੀ ਪਾਵ ਤਿੰਨੇ ਕੀਆ ਪੰਗ ਜੋ ਮੋਹ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੇ ਹਮ ਦੇਖਾ ਤੈ ਡੂਬੀ ਅਲੇ ਮਾਨ ਏਕ ਨਾ ਚੇ ਸਮੂੜ ਮੰਨਾ ਹਰ ਵਿਸਰ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ ਰਹਾਉ ਨਾ ਹੂੰ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਭਇਆ ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਣਾ ਜਿਨ ਤੋਂ ਨਾਹੀਂ ਵਿਸਰਿਆ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨ ਉਤੇ ਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ ਮਿਲ ਸਾ ਸੰਤ ਭਾਈ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸਰੰਜਾਮ ਲਾ ਪਾਉ ਜਲ ਤਰਨ ਕੈ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾ ਤਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੇ ਰਹਾਉ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ ਸਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸਰਮਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਕਬੇ ਵਾਜ ਬੇਨਤੀ ਚੋ ਪਈ ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੇ ਰੱਛਾ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚੇਤ ਕੀ ਇੱਛਾ ਤਾਪ ਚਰਨ ਮਨ ਰਹਿ ਹਮਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰਾ ਹਮਰੇ ਦੋ ਸਵੇ ਤੁਮ ਕਾਬੋ ਆਪ ਹਾਥ ਦੇ ਮੋਹੇ ਬਚਾਵੋ ਸੁਹੀ ਵਸੇ ਮੋਰੋ ਪਰਵਾਰਾ ਸੇਵਕ ਸੇ ਸਭੇ ਕਰਤਾਰਾ ਮੋਰ ਅੱਛਾ ਨਿਜ ਕਰਦੈ ਕਰੀਐ ਸਭੈ ਰਿਨ ਕੋ ਆਜ ਸੁੰਗਰੀਐ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ ਆਸਾ
तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें शाड़ कोई अवर ना त्याऊं, जो बर जाऊं तुम ते पाऊं, सेवक से खा मारे तारी है, जों जों सत्रह मारे मारी है, आप हाथ दे मुझे अबरी है, मरण काल का त्रास सुनवरी है, हो जो सदा हमारे पच्छा, सिरिया तो जो करी हो रच्छा, रा लियो मोय राखण हारे, साहेब संत सहाय प्यारे, दीन बन दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दास कंता, काल पाए ब्रह्मा भवतरा, काल पाए शिव जू अवतरा, काल पाए कर्मे प्रकाशा, सगल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी सेव कियो, भेदराज ब्रह्मा ज्योतियो, जवन काल सब लोक सवारा, नाम सकार है ताए हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दया जशन अपजायो, आद अंत कह अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिसी को हमारी, सर प्रजा जन आप सवारी, सेवकन को सेवकन सो दियो, सतरन को पल मोम बद कियो, कट कट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पशानत, चीटी ते कुंचरे अस्तूला, साप पर कृपा देश कर फूला, संतन दो पाए ते दुखी, सो पाए साधन के सुखी, एक एक ही पीर विशान, कड़ कड़ के पड़ पड़ की जाने, जाबुद कर करा कर तारा, पर जा तर तव दे अपारा, जाबा कर कर तो कब हूँ, तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ, जेते वरन से सब तारे, आप अपने बूझ उचारे, तुम सब ही तेरा तनरालम, जान बेभेद रियालम, निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद नीलन आद संभ, ताका मूढ़ जात भेदा, जाको बेव न पावत बेदा, ताको कृपान मानत, महामूढ़ का पेर न जात, महादेव को कह सदा शिव, निरंकार का चिन्हत न भेव, आप अपने बुद्ध है जेती, बनत पिन पिन तो है तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, के बैसा प्रथम संसारा, एक रूपन उस रूपा, रंग प्योरा कहीं पूपा, अंड जर से तजकीने, उत्पज खान बहोर रच दीनी, कहूं बुरा जाहूं बैठा, कहूं सुन प्यो संगर कैठा, सगरी से दिखाए चंबो, आजगा श्रू से अंबो, अब रक्षा मेरी तुम करो, सेखे अबारे से संगरो, दो जित उठो तो पाता, सगल मलेश करो रणगाता, जया तो सब सरणी परे, तिनके दुष्ट दूत है मरे, पुरह जन बापरे तिहारे, तिनके तू संकट सब टारे, जो काल को एक बार ते आए हैं, ताके काल निट नहीं आए हैं, रचा होए ताए सब काला, दूठरी टरे तर काला, कृपा दृष्टन जाए न हर हो, ताके ताव तनंग में हर हो, रेद सेद कर्मो सब होई, दो सह सह सके ना कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल पांते ताने बारा, जिंदर नाम त्यार हो कहा, दार दो दो तेरा, खड़ग के तमें शरण तिहारी, आप हाथ दे लियो अबारी, सर्व डोर मोह सहाई, दुष्ट दो ते लियो बचाई, सवैया पाएंगे जब ते तुम रहे, तब ते को आंतरे नहीं आने,
राम रहीम पुराण कुरान ने कह मत एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र बे सब है बहु भेद गया मेघ न जाने। श्री आसमान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तो बखाने। दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तुआरो द्वार। बाएं गए की लाज अस गोविंदास तुहार। राम कली महला तीजा आनंद क्यों ओंकार। सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। सतगुर तां पाया सहज सेती मन वजियां बादामिया। राग रतन परवार परिया शब्द गावने आईया। शब्दो तां गावो हरि केरा मन जि वसाया। कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले। हर ना रहो तू मन मेरे दुख सबे सारन। अंगीकारो करे तेरा कार सब सवारना। सब ना गलां सिमरा स्वामी सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहेबा क्या नाही कर तेरे। करदा तेरे सब किज है जे दे सो पावे। सदा सिसला तेरी ना मन वसावे। नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द गनेरे। कहे नानक सच्चे साहिब क्या ना ही कर तेरे। साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा। जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन ऐ वसया। जिन शांसा पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटों जे दियां वड़ियाइया। कह नानक सुनो संतो शब तरो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो वाजे पन शब्द कर सुभागे। कर सुभागे शब्द वाजे कला जिद कर तारिया। पंज दो तुद वास कीते काल कंटक मारिया। तुर करम पाया तो जिन को से नाम हर के लागे। कहे नानक तै सुख हुआ तित कर अनहद वाजे। आनंद सुनो वड पागीओ सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसूरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सची बाणी। संद साजन पै स्वर से पूरे गुर ते जानी। सुनते पानीत कहते पवित सतगुर आप पूरे। बिनवंत नान गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। मुदावणी महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पईओ। सासंदो विचारो अमृत नाम ठाकुर का पैओ। जिसका सब सदारो जे को खावे जे को पूंछे तिसका होयो दारो। एह वस्त तजी न जाई नित निराकुर तारो। तम संसार चन लगत रिया सब नानक ब्रह्म पसारो। श्लोक महला पंजवा तेरा कीता जा तो नाही मैनो जो कि तोई। मैं निर्गुण यारे को गुण नाही आपे तरस प्योई। तरस पिया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिलिया। नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवे हरिया।
तरस पया मेहरामत होई, सतगुर सजन मिलिया, नानक नाम मिले ता जीवा, तन मन थीवे हरिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।

संत प्रसाद वसै मन माही, जन्म जन्म के किल विख जाही। कर कृपा प्रभ दीन दयाला, नानक मांगै संत रवाला। कर कृपा प्रभ दीन दयाला, नानक मांगै संत रवाला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ, वाहिगुरु साहिब जीओ। आसा करवत भला ना करवट तेरी, ला गले सुन बिनती मेरी। हों वारी मुख फेर प्यारे, करवट दे मोको काहे को मारे। रहाओ जौं तन चीरै अंग न मोरू, पिंड परै तौ प्रीत न तोरू। हम तुम बीच भयो नहीं कोई, तुम्हें सुकंत नार हम सोई। कहत कबीर सुनोरे लोई, अब तुमरी प्रतीत न होई। आसा कोरी को काहू मर्म न जाना, सब जग आन तनायो ताना। रहाओ जब तुम सुन ले वेद पुराना, तब हम इतनक पसरियो ताना। तरने आकाश की करगा बनाई, चंद सूरज दो साथ चलाई। पाई जोर बात एक कीनी, तह तांती मन माना। जो लाहे घर अपना चीना, घट ही राम पछाना। कहत कबीर कारगा तोरी, सूतै सूत मिलाए कोरी। आसा अंतर मैल जे तीर्थ नावै, तिस बैकुंठ न जाना। लोक पतीणे कछु न होवै, नाही राम अयाना। पूजो राम एक ही देवा, साचा नावण गुर की सेवा। रहाओ जलकै मजन जे गत हुवै, नित नित मेंढुक नावै। जैसे मेंढुक तैसे ओए नर, फिर फिर जौनी आवै। मनो कठोर मरै बा नारस, नरक न बांचिया जाई। हर का संत मरै हड़म्बै, ता सगली सैन तराई। दिन सनारैन वेद नहीं शास्त्र, तहां बसै निरंकारा। कह कबीर नर तिसै त्यावो, बावरिया संसारा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा बाणी श्री नाम देव जी की। एक अनेक व्यापक पूरक, जत देखो तत सोई। माया चित्र बचित्र मोहित, बिरला बूझै कोई। सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। सूत एक मन सत सहंस जैसे, ओत पोत प्रभ सोई। रहाओ जल तरंग रफीन बुदबुदा, जल ते बिन न होई। ए प्रपंच पार ब्रह्म की लीला, विचरत आन न होई। मिथ्या भरम अर सुपन मनोरथ, सत पदार्थ जानिया। सुकृत मनसा गुरे उपदेशी, जागत ही मन मानिया। कहत नाम देव हर की रचना, देखो हृदय बिचारी। घट घट अंतर सर्व निरंतर, केवल एक मुरारी। आसा आनीले कुंभ पराईले उदक, ठाकुर को इशनान करो। 42 लख जी जल मैं होते, बीठुड़ पहला काय करो।
जतर जाओ तत बीठल पहला महा आनंद करे सद केला रहाओ आ नीले फूल परोईले माला ठाकुर की हों पूज करो पहले बास लई है पवरै बीठल पहला काय करो आ नीले दूध रधाईले खीरंग ठाकुर को ना वेद करो पहले दूध बिटारियो बछरै बीठल पहला काय करो इबे बीठल उबे बीठल बीठल बेन संसार नहीं थान थनंतर नामा प्रणवै पू रहो तू सर्व मही आसा मन मेरो गाज जेहबा मेरी काती माप माप काटो जम की फांसी कहा करो जाति कहा करो पाती कहा करो जाति कह करो पाती राम को नाम जपो दिन राती रहाओ रंगन रंगो सीवन सीवो राम नाम बिन करी न जीवो भगत करो हर के गुण गावो आठ पहरे अपना खसम त्यावो सोने की सुई रुपे का धागा नामे का चित हर सो लागा आसा साप कुंच छोड़ै बेख नहीं छाड़ै उदक माहे जैसे बाग ध्यान मांडै काहे को कीजै ध्यान जपन्ना जब ते शुद्ध नहीं मन अपना रहाओ सिंगच भोजन जो नर जानै ऐसे ही ठग दियो बखानै नामे के स्वामी लाहेले झगरा राम रसायन पियो रे दगरा आसा पार ब्रह्म जे चीन सी आसा ते ना भाव सी रामा भगता चेती अले अचिंत मन राख सी

सखाई हर कीरत हमरी रह रा सराहाओ हर जन के वड पाग वडेरे जिन हर हर शरदा हर प्यास हर हर नाम मिले त्रिपता सें मिल संगत गुण प्रगाश जिन हर हर हर रस नाम न पाया ते भाग हीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास तन तन सत संगत जित हर सपाया मिल जन नानक नाम प्रगाश गुजरी महला चौथा गोविंद गोविंद प्रीतम मन प्रीतम मिल सत संगत शब्द मन मोह जप गोविंद गोविंद त्याई सबको दान दे प्रभ ओ है मेरे भाई जना मोको गोविंद गोविंद गोविंद मन मोह गोविंद गोविंद गोविंद गुण गावा मिल गुर साध संगत जन सो है रहाओ सुख सागर हर भगत है गुरमत कौला रिद सिद्ध लागे पग ओ है जन को राम नाम आधारा हर नाम जपत हर नामे सो है दुर्म

पाइए, तृप्ता तृप्ते विष्टा खाए मुख गो है, अमृत सर सतगुर सतवादी जितना तै कौआ हंस हो है, नानक तन तन वडै वड भागी जिन गुरमत नाम हृदय मल तो है। गुजरी महला चौथा

राए जिनकी भगत मेरे प्रभाई, ते जन नानक राम नाम लिवलाई। गुजरी महला पंजवां चौप दे घर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

की आशीष निमख न बिसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश रहाओ। सतगुरु तुम कहो होए दयाला संत संग तेरी प्रीत कापड़ पत परमेश्वर राखी भोजन कीर्तन नीत अमृत पीवें सदा चिर जीवें अमृत पीवो सदा चिर जीवो हर सिमरत आनंद अनंता रंग तमाशा पूर्ण आसा।

रिझाओ। जीत जीत जीते सब थाना, सगल पवन लपटही, कहो नानक साध ते भागी, होए चीरी चरण गही। गोजरी महला पंजवा, दोए कर जोड़ करी बेनंती, ठाकुरे अपना त्याया, हाथ दे राखे परमेश्वर सगला दुरत मिटाया। ठाकुर होए आप दयाल, पई कल्याण आनंद रूप हुई है, उभरे बाल गोपाल रहाओ। मिलवर नारी मंगल गाया, ठाकुर का जयकार, कहो नानक तिस गुर बलिहारी, जिन सब का किया उदार। गुजरी महला पंजवा, मात पिता पाई सुत बंद पा, तिनका बड़ है थोरा, अनक रंग माया के पीख है, किस साथ न चाले भोरा। ठाकुर तुझ बिन आहे न मोरा, मोय नाथ निर्गुण गुण नाही, मैं आयो तुमरा तुरा रहाओ। बल बल बल बल चरण तुम्हारे, इहां तुम्हारा जोरा, साथ संग नानक दर्श पायो, बिन स्यो सगल निहोरा। गुजरी महला पंजवा, आल जाल भ्रम मोत जावे, प्रभ सेती रंग लाई, मन कोए उपदेश दृढ़ावे, सह सहज गुण गाई, साजन ऐसो संत सहाई, जिस पेटे टूटे माया बंद, बिसरन कबहू जाई रहाओ। करत करत अनक बहु भांति, नीकी ए ठहराई, मिल साधु हर जस गावे, नानक भवजल पार पराई। गुजरी महला पंजवा, खिन मैं थाप थापनहारा, कीमत जाए ना करी, राजा रंक करे खिन पीतर, नीचे जो तरी, त्याइये अपनो सदा हरी। सोच अंदेसा तां का कहिए, सोच अंदेसा तां कहा करिए, जा मैं एक करी रहाओ। तुमरी टेक पूरे मेरे सतगुर, मन शरण तुम्हारे परी, अचेत

चरण कमलृद माए समाए ता पर मंदेरा नाही ठाकुर जा सिमरा तू ताही कर कृपा सरप्रत पालक प्रभु को सदा सलाही रहाओ सा सास तेरा नाम समारो तुम ही को प्रभ आही नानक टेक पही करते की होर आस बिडाणी लाही गुजरी महला पंजवा कर कृपा अपना दर्श दीजै जस गावो निसियर भूर के संग दास पग चारों एह मनोरथ मोर ठाकुर तुझ बिन बिया न होर चित चित मोह हर रसन अरादू निरखो तुमरी ओर रहाओ दयाल पुरख समरथ के ठाकुर बिनो करो कर जोर नाम जपै नानक दास तुमरो उदर से आखी फोर गुजरी महला पंजवा ब्रह्म लोक और रुद्र लोक आई इंद्र लोक ते ताए साध संगत को जो न सके मल मल तो वह पाए अब मोहे आए परयो शरण आए गोहज पाव को बहुत पुजारे गोहज पाव को बहुत परजारे मुख सतगुरु दियो है बताए रहाओ सिद्ध साधिक अर जखिया किन्नर नर रही कंठी उर जाए जन्ना ने कांग किया प्रभ करते जा कै कोट ऐसी दसाए गुजरी महला पंजवा अब जस मिटै हुवे जग कीरत दरगा बैसन पाईए जम की त्रास नास होए खिन मैं सुख आनंद छेती कर जाइए जा ते काल ना बिरथी जाइए आठ पैर सिमरो प्रभ अपना मन तन सदा त्याई है रहाओ मोहे शरण दीन दुख भंजन तू दे सोई प्रपाइए चरण कमल नानक हर रंग राते हर दासा पैज रखाइए गुजरी महला पंजवा विश्वंबर जीअन को दाता भगत परे भंडार जा की सेवा निफल न होवत खिन मैं करे उदार मन मेरे चरण कमल संगराच सगल जी जा को आराधे ताहू को तू जाच रहाओ नानक शरण तुम्हारी करते तू प्रभ प्राण आधार होए सहाई जिस तू राखें तिस कहा करे संसार गुजरी महला पंजवा जन की पै सवारी आप हर हर नाम दियो गुरु अब खुद उतर गयो सब ताप रहाओ हर गोविंद रखियो परमेश्वर अपनी कृपा तार मिटी व्याध सर्व सुख होए हर गुण सदा विचार अंगीकार कियो मेरे करते गुरपुरे की वड्याई अब चलनी मतरी गुरु नानक नित नित चढ़े सवाई गुजरी महला पंजवा कबू हर स्यो चीत न लायो तंदा करत बिहानी औदै गुण निद नाम न गायो रहाओ कौडी कौडी जोरत कपटे अनक जुगत कर तायो विसरत प्रभ के ते दुख गणिय महामोनी खायो करो अनुग्रह स्वामी मेरे गुना न मोह कमायो गोविंद दयाल कृपाल सुख सागर नानक हर शरण आयो गुजरी महला पंजवा रसना राम राम रवंत छोड़यान बिहार मिथिया भज सदा भगवंत रहाओ नाम एक आधार भगता ईत आगे टेक कर कृपा गोविंद दिया गुर ज्ञान बुद्ध विवेक करन कारण समरथ श्री तर शरण ता की गई मुक्त जुगत रवाल साधु नानक हर निद लही वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बड़भागी हो अमृत वेले दे सज्जे दवाना दियां हाजरियां परदियां सतगुरां की अमृतमई बाणी दे श्री सहज पाठ नाल आप संगत ने सांझ पाई है समा है आसा की वार दे कीर्तन दा कीर्तन सरवण कराउणगे भाई दिलबाग सिंह जी उन्हां दा जथा बड़े प्यार नाल सरवण करो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

0: छुटिए मुतुका फिक्का पाए, फिक्का मूर्खा किए आने ले सजाई महला पहला।
1: अंदरों झूठे पैज बार दुनिया अंदर फैल, अड़सठ तीर्थ जे नाव है उतरे ना ही मैल, जिन पट अंदर बार गुदड़ते पले संसार। तिन ने

दुख कोई न जाने तुमरा अंत उचे ते ऊचा सगल समगरी तुमरे सूत्र तारी तुम ते हो एसो तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा बोलना जी सतनाम वाहे गुरु एक ओंकार वाह गुरु जी की फतेह वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवें प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डठे सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरै घर नौ निदे आवे ताय सब थाई हुए सहाय दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार का ध्यान धर के बोलो जी पंजा प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अन डिठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी जिन्ना सिंगा सिंगणियां धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखियां ते चढ़े आरियां नाल चिराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसा स्वासा संग निभाई तिना दी कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेते आवे चेते आवन का सदका सर्व सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रच्छिया रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसादान पुरुषादान

सिमरो सो प्रभे अपना स्वामी, सगल कटा का अंतर जामी। सिमरो सो प्रभे अपना स्वामी, सगल कटा का अंतर जामी। रहाओ चरण कमल स्यों लागी प्रीत, साची पूर्ण निर्मल रीत। संत प्रसाद वसै मन माही, जन्म जन्म के किल विख जाही। कर कृपा प्रभ दीन दयाला,

सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ वाहिगुरु साहिब जीओ जो हमारी बेद होती मेरे सतगुरा

जित मिले चूके सब सोग संतापी। मैं मूर्ख की केतुक बात है, कोट पराधी तरियारी। गुर नानक जिन सुनिया पिखिया,

रोग ना ब्यापै तीनों ताप, अब मन उलट सनातन हुआ, तब जानिया जब जीवत मुआ, कहो कबीर

कृष्णा बिसर कबहु ब्रह्म प्रभ सुमरथु गुण अन कृष्णा क्या बखाने अगंत सदा अकथ दीन दर्द निवार तारण दयाल कृपा का करण अटल पदवी नाम सिमरन दृढ़ नानक हर हर शरण गुजरी महला पंजवा अहोबद बहु सगन माया महा दीर्घ रोग हर नाम औखद गुरनाम दीनो करण कारण जोग मन तन बाछिए जन तूर कोट जन्म के लह पातक गोबिंद लोचा पूर रहाओ आदु अंते मदवासा कुकरी विकराल गुर ज्ञान कीर्तन गोबिंद रमन काटिए जमजाल काम क्रोध लोभ मोह मूठे सदा आवा गवन प्रभ प्रेम भगत गोपाल सिमरन मिटत जोनी पवन मित्र।

विचार कूट दे तिस जाचे प्रभ नायक दे दे टूट नाही भंडार उदे भांडे कछ न समावे सीधे अमृत परे निहार सिद समाधि अंतर जाचे रिद सिद जाच करे जयकार जैसी प्यास होए मन अंतर तैसो जल देवे प्रकार बड़े भाग गुरसेव है अपना भेद नाही गुरदेव मुरार ताको काल नाही जम जो है बूझे अंतर शब्द विचार अब तब अवर ना मांगो हर पह नाम निरंजन दीजे प्यार नानक चात्रिक अमृत जल मांगे हर जस दीजे कृपा धार गुजरी महला पहला ऐ जी जन्म मरे आवे फुन जावे बिन गुरगत नहीं काई गुरमुख प्राणी ना मेरा ते नामे गत पत पाई पाई रे राम नाम चित लाई गुर प्रसादी हर परम जाची ऐसी नाम बढ़ाई रहाओ ऐ जी बहुते भेख करे भिखिया को केते उदर भरन कहताई बिन हर भगत नाही सुख प्राणी बिन गुर गर्भ न जाई ऐ जी काल सदा श्री ऊपर ठांडे जन्म जन्म वैराई जाची शब निरति सेम बाची सतगुरु बूझ बुझाई गुरसरण आई जोहे न साके दूत न सके संताई

सत गुर टेक टकाई। ज्योतिष महावै सोई करसी किरत न मेटे जाई। ऐ जी भाग पर गुरसरन तुम्हारी मैं अवना दूजी पहाई।

सहज हरि बिन हर नाम मृथा जग जीवन हर बिन फल मेघ करी ऐजी खोटे ठौर नाही कर बाहर निंदंगत नहीं काई रोस करी परमबख्श न मिटै नित निचड़ी सवाई ऐ जी गुर की दात न मिटै कोई मेरे ठाकुर आप निवाई निंदक नर काले मुख निंदा जिन गुर की दात न बहाई

जाय। सदा सदा सुसीवीय जू समय रहे समाए, अवर दूजा क्यों सेवी है जम्मे ती मर जाए। नै फल तिनका जीविया जे खसम ना जाने अपना, अवरी को चित लाए। नानक एव न जापै करता केती दे सजाए। महला तीजा सच्चा नाम ते आई है सबो वरते सच, नानक हुकम बू बुझ प्रवान होए ता फल पावे सच। कथनी बदनी करता फिरै हुक्मै मूल ना बुझाई, अंधा काच नकाच बौड़ी। संजोग विजोग उपायन सृष्टि का मूल रचाया, हुक्मी सृष्टि साजियन हन ज्योति ज्योत मिलाया। ज्योति उन सब चानना सतगुर शब्द सुनाया, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रै गुण सिर धंधे लाया। माया का मूल रचायन तुरिया सुख पाया। श्लोक महला तीजा सो जा जप सो तप जी सतगुरु मावै, सतगुर कै पाणे वड्याई पावै, नानक आप छोड़ गुरमाहे समावै। महला तीजा गुर की सिख को बिरला लेवै, नानक जिस आप मंडियाई दीवै।

उतारी, अंदन भगती रतिया हर पार उतारी, गुरशब्दी मन निर्मला होमे छड़ विकारी। हर हर नाम ते आई है हर हर निस्तारी, श्लोक

जाई। ऐसा सतगुरु जी मिले तुठा करी पसाऊ, मुक्त द्वारा मोकला सहज आओ जाओ। महला तीजा नानक मुक्त द्वारा आत्मिका नाना हो सुजाए। हमें मन स्थूल है क्यों कर विच दे जाए। सतगुर मिलिया हमें गई जोते जोत रे समयाए। एहो जिओ सदा मुक्त है सहजे रहा समाए पौड़ी। प्रभ संसार उपाय कै वस अपने कीता, गणते प्रभु न पाई है दूजे परमीता। सतगुर मिलिए जीवत मरै बूझ सच समीता, शब्दे होमे खोई है हर मेल मलीता। सब किस जाने करे आपू आपे बखसीता, शलोक महला तीजा। सतगुर सो चेतन लायो नाम ना वस्यो मन आए, त्रिग विहा जीविया क्या जग में पाया आए। माया खोटी रास हुआ एक चसे में पाज लह जाए। हथों छुड़ के तन से आओ होए बदन जाए कुमलाए। जिन सतगुरों से चित लाया तिन सुख वसिया मन आए। हर नाम ते आवे रंग सिओ हर नाम रहे लिवलाए। नानक सतगुर सो धन सौंपिया जे जी मैं रहा सुमाए। रंग तुसे को अगला बनी चढ़े चढ़ाए। महला तीजा माया हुई नागनी जगत ही लपटाए। इसकी सेवा जो करे तिसे को फिर खाए। गुरम

हर की सेवा गुजरी कर पहला। मले ना लाशे पार मलो परम लियो बैठो री आई, आवत किने ना पेख्यो कमने जाने री बाई। कौन कहे किन बुझिया रमैया आखन री बाही, रहाऊ ज्यों आकाश पंखी अलो खोज निरख्यो ना जाई। ज्यों जलमा जय माशलो मार्ग पेखणो ना जाई। ज्यों आकाश खड़ो लो मृग तृष्णा भरिया, नामे चे स्वामी बीठलो जिन तीन जरिया। गुजरी श्री रविदास जी के पदे घर, तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दूत ता विशरै तन बिटारियो, फूल पवर जल मीन बिगारियो। माई गोविंद पूजा कहाँ लै चढ़ावो, यवर ना फूल अनूप ना पावो। रहाउ मैं लागन वीर है पै है पुयंगा, बिखे अमृत बसै एक संगा। तूप दीप नहीं बेदे बासा, कैसे पूर करे तेरी दासा। तन मन अर्प पूज चढ़ावो, गुर प्रसाद निरंजन पावो। पूजा अर्चाया ही ना तोरी, कह रविदास कवन गत मोरी। गुजरी श्री त्रिलोचन जियो के पदे, कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अंतरमल निर्मल नहीं कीना, बाहर पेख उदासी। हृदय कमल कट ब्रह्म न चीना, काहे प्यास सन्यासी। पर में पुली रे जय चंदा, नहीं नहीं चीनिया परमानंदा। रहाओ कर कर खाया पिंड बधाया, खिंथा मुंदा माया। भूमसाण की पसुम लगाई, गुर बिन तत ना पाया। काहे जपूरे काहे तपूरे, काहे बलवो पानी। लख चौरासी जिन उपाय, सो सिमरो नरबाणी। काहे कमंडल कापड़िया रे, अड़सठ काहे फिराही। बतत्र लोचन सुन रे प्राणी, कान बिन गह गह के पाही। गुजरी अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरै, ऐसी चिंता मैं जे मरै। तरप जून बल बल अवतरै, हरी भाई गोविंद नाम मत बिसरै। रहा अंतकाल जो स्त्री सिमरै, ऐसी चिंता मैं जे मरै। बेसवा जून बल बल अवतरै, अंतकाल जो लड़के सिमरै, ऐसी चिंता मैं जे मरै। शुक्र जून बल बल अवतरै, अंतकाल नारायण सिमरै, ऐसी चिंता मैं जे मरै। बदत त्रिलोचन ते नरमकता, पीतंबर वाके हृदय बसे। गुजरी श्री जय देव जी ओ का पता, घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। परमाद पुरख मनोपमिंग, सत आद पावर तदंग। परमद पुथिंग परकृत परंग, जद चित सर्व गतिंग। केवल राम नाम मनोरमंग, बद अमृत तत्मयंग। ना दिनोत जसमरणेन जन्म जराद, मरण भयंग रहाउ। ईशत जमाद प्रभ्यंग, जस सब सत सोकृत कृतंग। पाव पूत पाव समतंग, परमतंग प्रसन्न मदंग। लोबाद दृष्ट पर ग्रह, जद विद आचरणंग। जद सकल दोह कृत दुर्मति, पर चक्र तर शरणंग। हर भगत निज नह केवलारद, कर्मणा बचसा। जोगेन किंग जगेन किंग, दानेन किंग तपसा। गोविंद गोविंद तै जप नर सकल शिव कदंग। जय देव आयो तस सुफटंग, भाव भूत सर्वग गतंग। ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाउ, निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। राग देवंगदारी महला चौथा, कर पहला। सेवक जन बने ठाकर लिव लागे, जो तुम राजस कहते गुरमत। तिन मुख भाग सुभागे, राहो टूटे माया के बंधन पाहे। हर राम नाम लिव लागे, हमरा मन मोहयो गुरमोहन। हम विषम भई मुख लागे, सगली रहन सोई अंधियाए। गुर किंचित कृपा जागे, दन नानक के प्रभ सुंदर स्वामी। मोहे तुम सारे अवर ना लागे, देव गंधारी। रो सुंदर कहो मिले कित गली, हर के संत बतावो मार्ग। हम पीछे लाग चली रहा।
ये केहे बचन सुखा नहीं रे चाल बनी है भली लुटरे मदरी ठाकर पाई ओ सुंदर हल ढुल मिली एको प्रियो सखिया सब प्रिय की जो भावै फिर सापली नानक गरीब क्या करे बेचारा हर भावै तित रा चली देव गंधारी मेरे मन मुख हर हर हर बोलिया गुरमुख रंग चुलू लै राती हर प्रेम भीनी चूलिया रहाओ हो फिर दीवानी आवल बावल तिस कारण हर टोलिया तुई मिले मेरा प्रीतम प्यारा हम तिस की गुल गोलिया सतगुर पुरख मनाहो अपना हरि अमृत पी चोलिया गुरप्रसाद जन नानक पाया हर लादा दे टोलिया देव गंधारी अब हम चली ठाकर पहार जब हम शरण प्रभु की आई राख प्रभु पावे मार राव लोकन की चतुराई उपमा ते बैसंतर जार कोई भला कहो पावे बुरा कहो हम तन दियो है टार जो आवत शरण ठाकर प्रभ तुमरी तिस राखो कृपा धार जन नानक शरण तुमारी हर जियो राखो लाजम रार देव गंधारी हर गुण गावै हो तिस बलहारी देख देख जीमा साध गुर दर्शन जस हृदय नाम मुरारी राव तुम पवित्र पावन पुरख प्रभ स्वामी हम क्यों कर मिलै जूठारी हमरे जिये होर मुख होर होत है हम कर्म हीन कुड़ियारी हमरे मदर नाम हर स्वामी हृदय अंतर दुष्ट दुष्टारी जो पावे त्यों राखो स्वामी जन नानक शरण तुम्हारी देव गंधारी हर के नाम बिना सुंदर है नकटी जो बेसुआ के करपूत जमत है ज्यो बेसुआ के करपूत जमत है तिस नाम पर तरकटी रहाओ जिनके हृदय नाहे हर स्वामी ते बिगड़ रूप बेरकटी ज्यो नगुराब बाता जाने वो हर दरगे है पर सटी जिनको दयाल हुआ मेरा स्वामी तिन साध जना पग चटकी नानक पतत पवित मिल संगत गुर सतगुर पाश शुकटी शुका देव गंधारी महला पंजमा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद माई गुर चरणी चित लाई है प्रभ हुए कृपाल कमल पर गासे सदा सदा हर त्याई है अरहाउ अंतर एको बाहर एको सब में एक समाई है कट अब कट रव्या सब थाई हर पूरन ब्रह्म दिखाई है उस्तत करे सेवक मन केते तेरा जंत ना कतहु पाई है सुख दाते दुख पंजन स्वामी जन नानक सद बल जाई है देव गंधारी माई हुन हार सो हुई है राच रहे रचना प्रभे अपनी कहां लाभ कहां कोई राव कह फूले आनंद बिखै सोग कब हसनो कब रोई है कब हूं मैल परे अब माने कब साधु संग धोई है कोई न मिटे प्रभ का किया दूसर नाही आलोई है कौ नानक तिस गुर बलहारी च प्रसाद सुख सोई है देव गंधारी माई सुनत सोच पह डरत मेर तेरत जो अभिमाना सुन सोमी की परत रहाओ जो जो कहे सोई पल मानो नाहे ना का बोल करत निमक ना बिसरो ही न मोरे ते बिसरत जाई हो मरत सुखदाई पूरन प्रभ करता मेरी बोस आणप जरत निर्गुण करूप कुल हीन नानक हो आनंद रूप स्वामी भरत देव गंधारी मन हर कीरत कर सद हूं गावत सुनत जबत जो दान है बरण या बरणा सब हूं राहो जैते उपजो तही समायो ये विद जानी तब हूं जहां जहां तै देही धारी रहन ना पायो कब हूं सुख आयो पै परम बना से कृपाल हुए प्रभ जब हूं कहो नानक मेरे पूरे बनोरथ साध संग तज लभ हूं देव गंधारी मन जो अपने प्रभ पावो नीचो नीच नीच यत ना हुए गरीब बलाव राव
अनक आडंबर माया के बिरथे ता सो प्रीत कटावो जो अपनो स्वामी सुख मान ता मैं शोभा पावूं। दासन दास रेण दासन की जन की टहल कमावो सर्ब सुख बढ़ियाई नानक जीवो मुख हो बोलावो। देव गंधारी प्रभ जी तो प्रसाद परम डार्यो तुमरी कृपा ते सबको अपना मन मैं एह विचार्यो रहाओ। कोट प्रहाद मिटे तेरी सेवा दर्शन दुख तारियो नाम जपत महा सुख पायो चिंता रोग बिदार्यो। काम क्रोध लोभ झूठ निंदा साधु संग बिसार्यो माया बंद काटे कृपा निद नानक आप उधार्यो। देव गंधारी मन सकल सियान ब्रही करण करावन हार स्वामी नानक ओट गई रहाओ आप मेट पै सरनाई ए मत साधु कही। प्रभ की आज्ञा मान सुख पाया भरम अंधेरा लही जान प्रवीन स्वामी प्रभ मेरे शरण तुम्हारी यही। खिन मैं थापयो थापन हारे कुदरत की मना पही। देव गंधारी महला पंजवा हर प्राण प्रभु सुखदाते गुर प्रसाद काहू जाते रहाओ। संत तुम्हारे तुमरे प्रीतम तिनको काल न खाते रंग तुम्हारे लाल भई राम नाम रस माते। महा किलबिक कोट दो करोगा प्रभ दृष्ट तुहारी राते सोबत जाग हर हर हर गाया नानक गुर चरण पराते। देव गंधारी महला पंजवा सो प्रभ जतकत पेख्यो नैनी सुखदाई जीवन को दाता अमृत जाकी बैणी। रहाओ अज्ञान अंधेरा संती काटिया जी दान गुर दैणी। हर कृपा कर लीनो अपना जल ते शीतल होनी कर्म धर्म किश उपजना आयो न उपजी निर्मल करनी। छाड़ सियाणप संजम नानक लागो गुर की चरणी। देव गंधारी महला पंजवा हर राम नाम जप लागत पावै सुख सहज आनंदा काटे जमके बाहर आओ। खोजत खोजत खोज विचार्यो हर संत जना पैया तिना प्राप्त ये निदाना जिन कै कर्म लिखा से बड़ भागी से पतवंते से ही पूरे साह। सुंदर सुगण स्वरूप ते नानक जिन हर हर नाम बिसाहा। देव गंधारी महला पंजवा मन कह हंकार अफारा दुर्गंध अपवित्र अपावन पीतर जो दिसै सो शारा रहाओ। जिनकी आ तिस सिमर प्राणी जियो प्राण जिन धारा तिसे त्याग अबर अपलावै अप अबर लपटावै मर जन्मै मुग्ध गवारा। अंध गुंग पिंगल मतहीना प्रभ राखो राखण हार करण करावन हार समरथा क्या नानक जंत बिचारा। देव गंधारी महला पंजवा सो प्रभ नेरै हूं ते नेरै सिमर त्याए गाए गुण गोबिंद दिन रैण सा सवेरा। राय उदर देह दुलभ साधु संग हर हर नाम जपे रै करी न मोहत ना ससाबे लंबो काल नित है नित ही राय। आंध बिला ते काडो करते क्या नाही करते रै नाम धार दी जय नानक कौ आनंद सुख कने रै शके। देव गंधारी महला पंजवा मन गुरमिल नाम अधार्यो कर कृपा सुख सहज आनंद मंगल रस जीवन का मूल पा दियो। रहाओ कर कृपा अपना दास कीनो काटे माया पा दियो। भाओ भगत गाए गुण गोबिंद जम का मार्ग साध्यो पयो अनुग्रह मिट्यो मूर्चा अमोल पदार्थ लाद्यो। बलहारा नानक लख मेरा मेरे ठाकर अगम या गाद्यो। देव गंधारी महला पंजवा माई जो प्रभ के गुण गावै सफल आया जीवन फलता को पार ब्रह्म लि बुलावै। रहाओ सुंदर सुगण सूर शोभेता जो साधु संग पावै दाम उचार करे हर रसना बहुण ना जूनी धावै पूर्ण ब्रह्म रव्या मन तन मह आन ना दृष्टि आवै। नरक रोग नहीं होवत जन संग नरक नानक जिस लड़ लावै
ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਚੰਚਲ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਉਰਧਾਰਿਓ, ਇਤਨੀ ਨਾ ਬੁਝੈ ਕਬਹੂੰ ਚਲ ਨਾ ਵਿਖਲ ਭਇਓ, ਸੰਗ ਮਾਇਓ ਰਹਾਉ। ਕੁਸਲ ਰੰਗ ਸੰਗ ਰਸ ਰਚਿਆ, ਵਿਖਿਆ ਏ ਕੋਇ ਪਾਇਓ, ਲੋਭ ਸੁਣੈ ਮਨ ਸੁਖ ਕਰ, ਮਾਨੈ ਬੇਗਤ ਹਾਂ ਉਟਤਾਇਓ, ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਬਹੁਤ ਸਰਮ ਪਾਇਓ, ਸੰਤ ਦੁਆਰੇ ਆਇਓ, ਕਰੀ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਵਾਮੀ, ਨਾਨਕ ਲਿਓ ਸਮਾਇਓ। ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਗੁਰ ਚਰਨਾ, ਕਲ ਮਲ ਡਾਰਨ ਮਨ ਹੈ ਸਾਧਾਰਨ, ਇਹ ਆਸਰ ਮੋਹੇ ਤਰਣਾ ਰਹਾਉ। ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਸੇਵਾ ਬੰਧਨੀ, ਇਹ ਟਹਿਲ ਮੋਹੇ ਕਰਨਾ ਬਿਕਸੈ, ਮਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਬੋਹਰ ਨਾ ਗਰਬੈ ਪਰਨਾ, ਸਫਲ ਮੂਰਤ ਪਰਸੋ ਸੰਤਨ ਕੀ, ਇਹ ਧਿਆਨਾ ਤਰਣਾ ਪਹੂ ਕਿਰਪਾਲ ਠਾਕਰ, ਨਾਨਕ ਕੋ ਪਰਿਓ ਸਾਧ ਕੀ ਸਰਣਾ। ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਹਰ ਪੈ ਬਿਨਤੀ ਕਹੀ ਆ, ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਰੰਦ ਮੰਗਲ, ਨਿਜ ਸਾਧੂ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਿੱਧ ਲਹੀਆ ਰਹਾਉ, ਮਾਣ ਤਿਆਗ ਹਰ ਚਰਨੀ ਲਾਗੋ, ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਅੰਚਲ ਗਈ ਹੈ, ਆਂਝ ਨ ਲਾਗੈ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਤੇ, ਸਰਨ ਸੁਆਮੀ ਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਟ ਪਰਾਧ ਮਹਾਇਆ ਕਿਰਤ ਖਣ, ਬੋਹਰ ਬੋਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਰੁਣਾ ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਸਰਣ ਹੀ ਆਏ। ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰਭਿ ਸਾਰੋਗ ਸੋਗ ਸਭ ਦੁੱਖ ਬਿਨਾਸੇ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਕਲੇਸ਼ਾ ਰਹਾਉ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਬਿਕ ਨਾਸੈ, ਕੋਟ ਮਜਨ ਸ਼ੁਨਾਨਾ, ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਗਾਵਤ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ, ਲਾਗੋ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਕੀਨੋ, ਬੰਧਨ ਤੂਰ ਨਿਰਾਰੀ, ਜਪ ਜਪ ਨਾਮ ਜੀਵਾ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬਲਹਾਰੇ ਸ਼ਕੇ। ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਮਾਈ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਚਰਨ ਨਿਹਾਰੋ, ਕਰੋ ਅਨਗਰੋ ਸਵਾਮੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਕਬੂ ਨਾ ਡਾਰੋ, ਰਹਾਓ ਸਾਧੋ ਧੂਰ ਲਾਈ, ਮੁਖ ਮਸਤਕ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਕਜਾਰੋ, ਸਭ ਤੇ ਨੀਚ ਆਤਮ ਕਰ ਮਨੋ, ਮਨ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਖ ਧਾਰੋ, ਗੁਣ ਗਾ ਬੈਠਾ ਕਰੇ ਅਬਨਾਸੀ, ਕਲਮਲ ਸਗਲੇ ਚਾਰੋ, ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਦਾਨ ਪਾਵੋ, ਕੰਠ ਲਾਏ ਉਰ ਤਾਰੋ। ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਪੇਖੋ ਦਰਸਤ ਮਾਰਾ, ਸੁੰਦਰ ਧਿਆਨ ਧਾਰ ਦਿਨ ਰਹਿਣੇ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਨ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਰਹਾਓ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਅਵਲੋਕੇ, ਸਿਮਰਤ ਤਤ ਵਿਚਾਰਾ, ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਪ੍ਰਾਨਪਤ ਪੂਰਨ, ਭਵਜਲ ਉਦਰਨਹਾਰਾ, ਆਦ ਜਗਾਦ ਭਗਤ ਜਨ ਸੇਵਕ, ਤਾਂ ਕੀ ਵਿਖੇ ਆਧਾਰਾ, ਤਿਨ ਜਨ ਕੀ ਤੂਰ ਬਾਸ਼ੈ, ਨਿਤ ਨਾਨਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਵਨਹਾਰਾ। ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਤੇਰਾ ਜਨ ਰਾਮ ਰਸੈਣ ਮਾਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਰਸਾ ਨਿਤ ਜਾ ਕੋ ਉਪਜੀ ਛੋਡਨਾ, ਕਤੂੰ ਜਾਤਾ ਰਹਾਉ, ਬੈਠਤ ਹਰ ਹਰ ਸੋਬਤ, ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਰਸ ਪੂਜਨ ਖਾਤਾ, ਅੜਸਠ ਤੀਰਥ ਮਜਨ ਕੀਨੋ, ਸਾਧੂ ਧੂਰੀ ਨਾਤਾ, ਸਫਲ ਜਨਮ ਹਰ ਜਨ ਕਾ ਉਪਜਿਆ, ਜਿਨ ਕੀਨੋ ਸੌਤ ਵਿਦਾਤਾ, ਸਗਲ ਸਮੂਹ ਲੈ ਉਦਰੇ ਨਾਨਕ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਤਾ। ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਮਾਈ ਗੁਰਬਿੰਦ ਗਿਆਨ ਨ ਪਾਈਐ, ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਿਰਤ ਬਿਲ ਲਾਤੇ, ਮਿਲਨ ਨਹੀਂ ਗੋਸਾਈਐ, ਰਾਹੋ ਮੋ ਰੋਗ ਸੋਗ ਤਨ ਬਾਧਿਓ, ਬਹੁ ਜੂਨੀ ਭਰਮਾਈਐ, ਟਿਕਨ ਨ ਪਾਵੈ ਬਿਨ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਕਿਸੇ ਆਗੈ ਜਾਏ ਰੁਆਈਐ, ਕਰੇ ਅਨਗ੍ਰਹ ਸਵਾਮੀ ਮੇਰਾ, ਸਾਧ ਚਰਨ ਚਿਤ ਲਾਈਐ, ਸੰਕਟ ਕੋਰ ਕਟੇ ਕਿਨ ਪੀਤਰ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਦਰਸ ਸਮਾਈਐ। ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਠਾਕਰ ਹੋਏ ਆਪ ਦਿਆਲ, ਪਈ ਕਲਿਆਣ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਬਰੇ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲ ਰਹਾਉ, ਦੋਏ ਕਰ ਜੋੜ ਕਰੀ ਬੇਨੰਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਮਨ ਧਿਆਇਆ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸਗਲਾ ਦੁਰਤ ਮਿਟਾਇਆ, ਵਰਨਾਰੀ ਮਿਲ ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ, ਠਾਕਰ ਕਾ ਜੈਕਾਰ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਜੋ ਸਭਨਾ ਕਰੇ ਉਧਾਰ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੈ ਬਿਨੋ ਕਹਿਆ, ਪਹੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦਿਆਲ ਦੁਖ ਪੰਜਨ, ਮੇਰਾ ਸਗਲ ਆਂਦੇ ਸਰਾ ਗਿਆ,
रहाउ हम पापी पाखंडी लोभी हमरा गुण अवगुण सब सहया। कर मस्तक तार साज निवाजे मोय दुष्ट जो खेया परयपकारी सर्वसधारी सफल दर्शन सहजया। कहो नानक निर्गुण को दाता चरण कमल उर तरिया देव गंधारी महला पंजमा। आनाथ नाथ प्रभ हमारे शरण आयो राखण हारे रहाउ। सर्व पाख राख मुरारे आगे पाशे अंति वारे जब चितव तब तुहारे अनुसमार मेरा मन सधारे। सुन गावो गुरु बचना हरे बल बल जाओ साध दरसारे मन में राखो एक या सारे। नानक प्रभ मेरे करने हारे देव गंधारी महला पंजमा। प्रभि हे मैं नूरत मेरा कृपा नदान दयाल मोह दीजै कर संतन का चेरा रहा। प्रातः काल लागो जन चरनी निस बांसर दर्श पाहो तन मन अर्प करो जन सेवा रसना हर गुण गावो। सा सा सिमरो प्रभ अपना संत संग नित रही है एक आधार नाम तन मोरा आनंद नानक ये लही है। राग देव गंधारी महला पंजमा कर तीजा एको अंकार सतगुर प्रसाद। मीता ऐसे हर जियो पाए छोड़ ना जाई सद ही संगे अंदन गुर मिल गाए रहाओ। मिलियो मनोरथ सर्व सुख ना त्याग ना कतहु जाए अन कहन का पांत बोपे के प्रिय रूम ना संसर लाए। मंदर पाग सोप द्वारे अनहत रुण चुन लाए कहो नानक सदा रंग माणे ग्रह प्रिय तीते सद कथाए। देव गंधारी महला पंजमा दर्शन नाम को मन याचे परम आयो है सकल थान रे आहे परियो संत पाशा राव। किस हो से भी किस राधे जो दिष्ट सो गाश साध संगत की सरणी परिय चरण रेन मन बाशा। जुगत न जाना गुण नहीं कोई महादुर्त माए आशय पा आयो परियो नानक गुर चरनी तो उतरी सगल दुराशय। देव गंधारी महला पंजमा यमता प्रिय बचन तुहारे यत सुंदर मन मोहन प्यारे सबहू मद निरारे। अरहाओ राज न चाहू मुक्त न चाहू मन प्रीत चरण कमलारी। ब्रह्म महेश सिद्ध मुन इंद्र राम हुए ठाकर ही दरसारे। दीन द्वार है आयो ठाकर शरण परयो संत हारी। कहो नानक प्रभ मिले मनोहर मन शीतल बिग सारे। देव गंधारी महला

नाम कमल प्रगासे राम, हर नाम दृढ़ाए जप हर नाम, गिरा विगासे राम जप हर हर कमल प्रगासी है। हर